राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सुपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सुपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ये पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए किछ हथों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत वर्जित हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। सरवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

0: का जन रस कित फल पिके फल पग पगे कमना है पद मिटनी विनान का
1: अपराधी तूना ने वे जो हुत्ता मेरे का सिस्टिवाया क्या थी जरिदक सुधे जय मुला पहला।

जब इश्क निवास चली थी, इश्क प्यार जब इश्क निवास चली थी या की मंदिर ते की बसी थी, फिर चीजें की कोई कमी थी। हकीकत तो प्यार है, प्यार नहीं तो मंदिर ची कटी हुई जान का कोई ना, मस्जिद भी मथे टेकने का कोई ना। हकीकत प्यार तो भुले शाह लिखता है, जब इश्क निमाज से गीती है, क्या मंदिर से क्या मसीती है, फिर जब यार ने आन दीदार दिता, यार को वाह। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन, यार हमारे सच्चे यार कहते प्यारे तेरे नाल बहुता प्यार, कि पुराना आदमी हो मेरा यार है, सब तो श्रोमणी प्यार करने वाले धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख यार कहते। तो खुदा लिखता है, जब यार ने आन दीदार दिता, इश्क का सिजदा किया, यार सामने आके खड़ो गए, फिर होया कि बुले ने कमाल किया, कहता है जब यार ने आन दीदार दिता, गल दसनी नहीं जड़ी बीती है, वो दसन वाली चीज ये कुछ दसदा फिरदा है तो गलत। बाबा जी बचन करते कई ऐसे लोग, मैं तुहानू रब मिला देना, मैं रब हां नरमकार, बाबा जी बचन करते सन झूठ को जिथे मैं उथे तो रब होता ही नहीं, आखो श्री मैं तो बिछोड़ा है, क्यों भाई जे तू कहता है तो मैं निरंकार मिला दे, मैं निरंकार। हजूर कहते सो अजान कहे मैं जाना, जरा कहता मैं जानी तेरी बड़ी बिरती लगती, कुछ नहीं वो तो अनजान, और गुरमत नु समझे ही सो अजान कहे मैं जाना, जान हार ना छाना। किसी महात्मा ने बाबा धन सिंह जी महाराज के बेनती की, बाबा जी मैं सुनिया तुम्हें धन गुरु नानक पातशाह जी ने साक्षात दर्शन होते हैं, बाबा जी कह लगे महापुरश हो जे हां कहने तो हमे आती है, की पता होते ही होंगे आपस ही हां भी तो दुराई पाई, मैं मेरी ने दिती तैन सु, मैं मेरी ने सुनाई, इस तरह रात ते दिन दा मेल नहीं है, इसे तरह मैं ते तू दा मेल, जब हम होते मैं भी फिरदा है तो तू नहीं आए, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, जिथे तू ना प्रकाश हो जाएगा उथे मैं ही। बाबा जी ने उत्तर किया, की पता होते ही हो, महाराज मैनू भी दर्शन कराओ, बाबा जी सचखंड में लै गए सामने श्री गुरु साहब का प्रकाश की, लोगों पुछो आ गुरु नानक मैनू नहीं दिसता, बाबा जी कह लगे पढ़ाई तो बगैर कोई चीज नहीं मिलती, आखो श्री जितने तक पढ़ाई ना पढ़ी, बच्चा जे पढ़ाई पढ़ेगा तो आलम बनेगा, अखा ही है, पर हूं इलम बड़ा चंगा लग रहा है तो अपने मास्टर की संगत, तो गुरमत की पढ़ाई पढ़ के असि वो पढ़ते नहीं हाँ, नितनेम करते नहीं, बाणी नाल जुड़ते नहीं, जी मेरू दर्शन हो। बाबा जी ने प्रश्न किया साक्षात गुरु महापुरुष हो, पर यह नहीं कहना दर्शन मैं तो तू दा मेल,
ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜੀਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਜਾ ਕਦ ਸਮਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੂਠੇ ਮਰਜੀ ਗਏ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਇਹ ਹੀ ਕਰੇਗੀ

0: गुरु कारिज दो ही वस्तुआं सेवा ते सिमर सेवा नाल मन विच निम्रता आउंदी निम्रता वाले मन विच सिमरन टिक गंगा राम रात दिन भांडे मांजदा छे महीने अज नाले भांडे मांजी जांदा नाले अपने मन नूं पिया समझा के आसा जी दे कीर्तन का भोग पिया धन गुरु अमरदास पातशाह जी दीवान च उठे सीधे लंगर च आए गंगा राम दे कोल आके खड़ो हो गए गंगा राम की पिया कर रहे गंगा राम जो सिर चुके की तकिया जिस मूरत का ध्यान पिया करदा सा मूर्त सूरत बन के धन गुरु अमरदास पातशाह सामने खड़ोते गंगा राम हाथ तो सुआ न लिबड़े हुए सन पर अपना सिर गुरु के चरण देना रो रो के चरण रुत हो गंगा राम की करता है पातशाह तेरे सिखा दे झूठे भांडे किन्ना चिर हो गया है छह महीने धन गुरु अमरदास पातशाह जी मुस्कुरा रहे गंगा राम तेरी सेवा सफल मंग की मंग गुरु घर की सेवा जो भी करता है वो सफल गुरु की सेवा
1: सफल
0: सफल तन मन धन मन जो भी करता है जितनी भी करता है कोई गुरमुख माई पाई ओदा फल जरूर कर सेवा ते खा मेवा कर मजूरी ते खा चूरी गंगा रामा मंग तेरी सेवा गुरु नानक के दर ते परवान अच्छा फिर जो मंगा दे दोगे हजूर कहने लगे ये गुरु नानक का दर है हिंदू मुसलमान कुल का संग है जो मंगी गंगा राम हाथ जोड़ के पातशाह

और ये गामा बानी दारे दारे नीदा नीदा नीबा धामा धामा गा धामा बाबा बाबा धामा धामा बाबा गा धामा रे दानी दानी रे दारे दानी रे रे जानी जा गा गामा बा गामा पानी जा रे रे जा रे नी जा नी दा धा धा बा बा बा धा बा धा गा गा गामा गा रे रे गा रे जानी जा गानी रे रे तोम गिरना गिरना गिरना जंदरी जानी तोम जानी जा तोम गिरना दागरदी बिकते मांग दागरदी तोम तोम तोम करना दागरदी दे दे ताल दागरदी कोम करना दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल दागरदी कोम करना दागरदी दे दे ताल दागरदी दे दे ताल दागरदी कोम करना कोम करना कोम करना कोम

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है।

के निर्जुल नरूप हो के निर्जुल पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देच कुल गाव तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देच कुल गाव तेरा नाम है जी दुख दुख सद बोन सद लग तिक बद अरब के अरबी राज तेरा नाम है फारसी फरंगी

गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सज जावे, मन बैठे सतगुर के पास, मन बैठे

खेत मेरे जमिया निखुट न कबई जाए, पाया अमोल पदार्थ सदगुर सरणी पाए, कर्म

इस पर पंच में साचे नाम की वडियाई, मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर मांग समाना। ए बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। चौ जुगा का निबेड़ा नर मनुखा नो एक निदाना। जत संजम तीरथ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराणा।

लहे कमाना एक जुग पिछली जुगी करी कमाई पाया मानस देह नो इथों चुकिया ठौर नठाई।

आई। भाव भगत परवान है होम जग ते पुरब कमाई। करके नीच सदावना ता प्रभ अंदर लेके पाई। कल जुग ना

नानक देव जी ने अचल वटाले विखे जोगी नू ए उपदेश दिता। आखन लगे ओ जुग और सन जदों ए जोग ते तप कम आउंदे सन। ए जोगी हुण तां वागुरु दे नाम बिना कोई मुक्ति नहीं होनी, ए लिख लो। पातशाह ने उपदेश दिता है जो जोगी दुनिया नू करामातां विखा के कुछ मनुखां नू ठग रहा सी ते आखदा सी साधन करो, जोग करो, कर्म करो। पातशाह ने उथे बचन कीता है, गुरु नानक देव जी ने आखदे कल मैं राम नाम सार अखी तमीटे नाक पकड़े ठगण को संसार। आट से ती नाक पकड़े सूझते दिन लो मगर पाछे कछ न सूझे ए पदम अलो। खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेच भाख्या गई सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सोदे करे वेद अभ्यास

0: सतगुर मेरा तन निता, सतगुर मेरा कर दीवा, सतगुर के हाँ सद भर जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया।
1: पूरे गुरु ने मेनु भक्ति का मार्ग दसता,
0: भक्ति के मार्ग विच उस मालिक की प्राप्ति, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। तो प्यारी सास पिंड वालिया ने बड़ी मुखालफत की, शरीकां ने एदी पौं खोह ली, एदा घर जिहड़ा सी ओह भी संभाल लिया, ते इहनूं तक्के मार के कट। पर पक्की मन वाला भाई मन डोलिया, पूरे गुरु की बख्शिश होई है, मन अडोल आई, मन होर किसे नगर में चला गया। की करदा है कहा खोद के बाजार बेचदा है, ते ओदे नाल पंगा। पिंड दा चौधरी, पिंड दा सरदार, पिंड दा जथेदार, अज सिखी नाल प्यार करदा होया, अज इस कसौटी ते परखिया है। कहा खोद दे वेच के ओदे नाल गुजारा, ओदे विचों भी थोड़ी बहुती जिहड़ी माया है वह गुरु के लंगर च पाउंदा। बाकी दा समां नितनेम करदा है, सिमरन करदा है, गुरु दा जस करदा। कुछ समय दे बाद मन च ख्याल आया, मना गुरु दी नगरी भी चली, तो इसने अपनी घरवाली नूं समझाया, भगवान आपां गुरु दे सिख बने, गुरु साडे अंग सन, सिखी दी पढ़ाई विच इहो जिहा इम्तिहान आउंदे है। जिस बच्चे ने इम्तिहान नहीं दिता वो अगली क्लास से किस तरह पैस देता। भाई मग दे घर वाली बीबी बड़ी गुरु पत बिरता धर्म वाली आग्या का स्वामी जीवे तुहाडा हुकम। तो भाई मंझ ने सोच के एक चंगे सरदे पुजदे अमीर दे घर, शरीफ खानदान दे घर अपनी घरवाली नूं नौकरानी रख लै, पागा वाली मैं गुरु की नगरी में जाके गुरु घर की सेवा करांगा, ते तू इत्थे अपने बच्चियां दा पेट पाल। सत बच्चे भाई मंझ गुरु की नगरी विच आ गए। फिर प्यारी साध संगत पंजवें पातशाह दे दर्शन कीते, साहबां ने इहदे वल वेखिया ही नहीं, पर भाई मन दा मन अडोल है, मन मेरा गुरु अंतर जामी, हर अंतर जामी जाने बिर बोलत आप पछाण। फिर भाई मन हुण की करदा है, जंगल विच जांदा है, लकड़ा दी पंड बन के ते आके गुरु के लंगर च पा देंदा है, ते निर्वाह मात्र प्रसाद गुरु के लंगर च छक लैंदा। उस तो उपरंत गुरु घर दी सेवा अपना नितनेम कर, उस वाहिगुरु दा जाप कर, रोज दा नितनेम। तेरी सास संगत एक दिन साहबा ने पूछा, भाई मन जी पास की करदा है? पातशाह जो तू कराउंदा है वो करदा, फिर भी पातशाह सेवा केड़ी सेवा, जंगल विचो लकड़ा लिया के तेरे लंगर च पा दे। हजूर कहने लगे ते प्रसादा पातशाह प्रसादा तेरे लंगर चो छक ली। हजूर कहने लगे फिर भाई मन जी सेवा का फल की होया? लकड़ा लिया के लंगर च पा दतिया, मुआवजे की प्रसाद छक लिया, कोई वादा था ना? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੰਜ ਘਰ ਬਾਰ ਲੁਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਨਾਸਤਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੱਕ ਲੋ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੜੇ ਲੈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਚਰਨਾ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੋ ਪੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਹੀ ਸਿੱਟਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੂਹ ਚ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਚ ਡਿੱਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਬਣਾਏਗਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਟੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿ

नार मुनि रे चरना पे ठहर के किसे प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तुषितानो जो मेरे भगवान दे दर्शन जा रहे हो, नारद तुसी तानो जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलणगे, नारद ने तख्या प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू के रहे। नारद ने किया क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।